0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी फौज की सदर कमांड के मुताबिक यूएस ज्वाइंट टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमस्फेयर ने बहरा कैरेबियन में मंशियात की स्मगलिंग के कायमशुदा रास्ते पर चलने वाली एक तेज़ रफ्तार कश्ती पर मोहलिक हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनको नार्को टेररिस्ट करार दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में साउथ कॉम ने हफ्ते के रोज़ बताया कि यह हमला उसकी हिदायत पर किया गया था और इंटेलिजेंस ने इस बात की तस्दीक की थी कि यह कश्ती मंशियात की तजारत में सरगर्म अमल थी। पोस्ट में कहा गया कि 19 सितंबर को साउथ कॉम को हिदायत के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमस्फीयर ने कैरेबियन में मंशियात की स्मगलिंग के कायमशुदा रास्तों पर चलने वाली एक तेज़ रफ्तार कश्ती पर एक मोहलिक काइनेटिक हमला किया। मजीद कहा गया है कि इस ऑपरेशन में 4 नार्को टेररिस्ट हलाक हुए। यह हमला गुज़िश्ता साल से शुरू होने वाली उस मुहिम का ताज़ा तरीन हिस्सा है, जिसमें उन अनासर को निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें ट्रंप इंतजामिया नार्को टेररिस्ट करार देती है। गुज़िश्ता रोज़ का यह ऐलान कैरेबियन ही में किए गए एक और हमले के 10 दिन बाद सामने आया है, जिसके बारे में अमरीकी फ़ौज का कहना था कि इसमें 3 अफराद हलाक हुए थे। जब से यह मुहिम शुरू हुई है, कैरेबियन और मशरक़ बहरुल काहिल में कश्तियों पर अमरीकी हमलों के नतीजे में 220 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी उमूर ख़ारजा ने यूक्रेन को 2.68 अरब डॉलर के फ़ज़ाई दिफाई आलात की मुमकिन फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। यह फैसला कीव की जानब से रूसी हमलों को रोकने के लिए बार बार की जाने वाली इमदाद की अपीलों के बाद सामने आया है। उमूर ख़ारजा ने गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ कांग्रेस को भेजे गए एक नोटिफिकेशन में कहा कि उसने फ़िज़ाई दिफाई तरक्याती अपग्रेड और मुतालिका आलात और खिदमात की ख़रीदारी के लिए हुकूमत यूक्रेन को मुमकिन गैर मुल्की फ़ौजी फ़रोख्त की मंजूरी का फैसला किया है। उमूर ख़ारजा के मुताबिक कीव ने मुतादद इकसाम के मिज़ाइल लॉन्चर्स, इंस्तदाद ड्रोन रेडार और ट्रेलर समेत दीगर आलात खरीदने की दरख्वास्त की है। यह मुजवजा फरोख्त अब कांग्रेस के जायजे से मशरूत है। उमूर ख़ारजा ने कहा कि अगर यह मुजवजा खरीदारी मुकम्मल हो जाती है तो यूक्रेन उसकी माली एयानत के लिए यूरोपीय ममालिक के तआवुन और गुज़िश्ता इंतजामिया के दौरान मुख्तस की गई अमरीकी फॉरन मिलिट्री फाइनेंसिंग के इम्तजाज का इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस माह कहा था कि वो यूरोपीय ममालिक से कहेंगे कि वो उनके पेशरो जो बाइडन की इंतजामिया के तहत यूक्रेन को फराहम की जाने वाली अमरीकी इमदाद की रकम वापस करें। ट्रंप तवील अरसे से मुतालबा करते रहे हैं कि यूक्रेन के लिए मगरबी इमदाद के अखराज का ज़्यादा बोझ यूरोपीय ममालिक को उठाना चाहिए। जुम्मे की यह तजवीज़, जिसकी लागत का तखमीना उमूर ख़ारजा ने 2.68 अरब डॉलर लगाया है, एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ट्रंप ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई नई पाबंदियों की इजाज़त देने वाले एक बिल पर दस्तखत किए हैं। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में सबसे आला डेमोक्रेट सेनेटर जीन शाहीन ने इसराइल को 2.8 अरब डॉलर के मुजवजा असलहे की फरोख पर पाबंदी लगा दी है। शाहीन ने इस बात पर बढ़ती हुई मायूसी का इजहार किया है कि इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू गजा में शहरी हलाकतों, शाम में सरहद पार फिजाई हमलों और मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद गैर कानूनी इसराइली आबादकारों की जानब से फलस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के हवाले से डेमोक्रेटिक कानून साजों के तहफ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम रही हैं। इस मुतनाज़िया असलहे के पैकेज में 1 टन वजनी 40,000 बम शामिल हैं। बाइडन इंतजाम ने इससे कबल गजा के शहरी इलाकों में इन भारी हथियारों के तबाहकुन असरात और इसके नतीजे में होने वाली शहरी हलाकतों के बारे में शदीद तहफ़ुज़ात के बायस इसी तरह के भारी गोला बारूद की फराहमी रोक दी थी। सेनेट की खारजा तल्लुकात कमेटी की दर्जा बंदी की रुकन होने के नाते शाहीन के पास कायम शुदा गैर रस्मी रवायात के तहत ये इख्तियार हासिल है कि जब तक उमूर ख़ारजा कांग्रेस के एतराज़ात को दूर नहीं करता, वो हथियारों की अहम मुंतकली

पर रोक लगा सकती हैं। सेमाफोर ने सबसे पहले यह इंकशाफ किया था कि उन्होंने जुलाई में यह पाबंदी लगाई थी। ऐवान नुमाइंदगान में उनके हम मनसब नुमाइंदे ग्रेगरी मिक्स ने भी बुध के रोज़ ऐलान किया कि उन्होंने इसी फरोख्त की मंजूरी को रोक दिया है और इस हवाले से शदीद शकूक व शुबहात का इजहार किया है कि आया नतन्याहू की हुकूमत इन हथियारों को अमरीका के कवानीन और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करेगी या नहीं। सरकारी नशरियाती इदारे ZDF के आखिरी इंतखाबी जायजे के मुताबिक बरसर इकतदार सोशल डेमोक्रेट्स को इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD पर मामूली बरतरी हासिल है, जहां सोशल डेमोक्रेट 37% और AFD 36% पर मौजूद हैं। किसी भी जमात की जानिब से वाज अक्सरियत हासिल करने की तवक्को नहीं है, जिसकी वजह से जर्मनी में इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुजाकरात इंतहाई अहम हो जाएंगे। सोशल डेमोक्रेट्स 1998 से इस रियासत में हुकूमत कर रहे हैं। यह रायदही चांसलर फ्रेडरिक मर्स की क़दामत पसंद जमात CDU के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, जिसे पार्लियामेंट में दाखिले के लिए लाजमी 5% की हद से नीचे गिरने का खतरा लाहक है। और चिली की साबिक सदर मिशेल बैचलेट ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यह फैसला एक खुफिया राय शुमारी के चंद हफ्तों बाद सामने आया है, जिसमें वो 8 उम्मीदवारों में दूसरे आखिरी नंबर पर आई थीं। चिली की पहली खातून रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली बैचलेट ने हफ्ते के रोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा कि आज मैंने ऐलान किया है कि मैंने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि जिस किस्म की नुमाइंदगी मैं करना चाहती थी इस उम्मीदवारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं था। मुझे इस बड़े चैलेंज को कबूल करने पर कोई अफसोस नहीं है। बैचलेट ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वामे मुत्तहिदा के इस आला तरीन अहदे के लिए इंतखाबी दौड़ में शामिल होकर उन्होंने इस बहस को हवा देने में मदद की है कि अगला सेक्रेटरी जनरल लातीनी अमरीका से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा के अगले सरबराह के इंतखाब के गैर रस्मी अमल के हिस्से के तौर पर अब तक होने वाले 3 सर्वे में 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने दोबारा कोस्टा रिका की साबिक नायब सदर रेबिका ग्रेन स्पिन को बर्तरी दी है, जबकि तीसरे पोल में गयाना की साबिक वजीर खारजा कैरोलिन रोड्रिगस ब्रिकेट पहले नंबर पर रहीं। बैचलेट को इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता फरवरी में चिली के उस वक्त के सदर गैब्रियल बोरेक की इंतजामिया ने नामजद किया था और मैक्सिको और ब्राज़ील के बाएं बाजू के रहनुमाओं ने उनकी हिमायत की थी, लेकिन 74 साल बाएं बाजू की झुकाव रखने वाली बैचलेट की उम्मीदवारी उस वक्त अपनी रफ्तार खो बैठी जब चिली के नए रहनुमा इंतहाई दाएं बाजू के सदर होज़े एंटोनियो कास ने अपनी हिमायत वापस ली थी। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

वो अक्स नज़र आता है। दिन की रोशनी को ताज की तरह पहने हुए एक सुनहरा गुंबद यानी कुब्बतुस्सहरा। अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की हिदायत पर 7वीं सदी के आखिर में कुब्बतुस्सहरा की तामीर शुरू हुई, जो 691 तथा 692 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उसकी तामीर के अमल में दो नाम नुमाया तौर पर सामने आते हैं जो उस दौर के अहम ताबईन उलमा में से थे, यानी साहबा कराम को देखने वाली पहली नस्ल के माहिरीन रजा बिन हैवा और यजीद बिन सला। अमवियों ने इस इमारत को तामीर करते हुए मुख्तलिफ तहजीबों के फनकाराना वरसे से फ़ायदा उठाया और एक नया इस्लामी जमालियाती तसव्वुर पेश किया। बाज़ेंतीनी और सासानी फ़न के असरात का हामिल यह बेमिसाल शाहकार इस्लामी दुनिया की कदीम तरीन बड़ी यादगारों में से एक बन गया। सदियों पर मुहित इस यादगार का राज तो शुरू से ही उसके डिज़ाइन के अंदर छुपा हुआ था। यह डिज़ाइन कोई इतफाक़ी इंतखाब नहीं था, बल्कि यह इस इमारत के मरकज़ी ढांचे और पूरी जियोमेट्री का तायुन करने वाले बुनियादी अनासर में से एक है। एट साइडेड शक्ल इमारत को एक मजबूत तनासुब और तवाजुन का एहसास देती है। कुब्बतुस्सहरा के मरकज़ में मौजूद मुकद्दस चट्टान के गिर्द सतूनों के दो अहम मरकज़ दायरे बने हुए हैं। अंदरूनी दायरे में 4 बड़े सतून और 12 सतून चट्टान को घेरे हुए हैं, जबकि बाहर की 8 पहलू दीवारें इस पूरे निज़ाम को एक इकाई में तब्दील करती हैं। यहाँ जियोमेट्री सिर्फ आँख को नज़र आने वाली कोई सजावट नहीं है, ये एक ऐसा पोशीदा निज़ाम है जो इमारत की जगह को तरतीब देता और उसकी सालमियत को बरकरार रखता है। इस पूरे रियाजियाती निज़ाम के बिल्कुल मरकज में 13 से 18 मीटर कुतर की ज़मीन से तकरीबन 2 मीटर बुलंद एक कुदरती चट्टान मौजूद है। यह चट्टान इंसानी तारीख के गहरे तरीन मजहबी अकायद की यादें अपने अंदर समोए हुए है। इस्लामी रवायत में यह माना जाता है कि नबी करीम शब मेराज को यहीं से आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए थे। यहूदी रवायत में इस चट्टान को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से से जोड़ा जाता है, जबकि ईसाई रवायत में इसका ताल्लुक कदीम यरूशलम की हैकल और मुकद्दस मकामात से जोड़कर तशरीहात की जाती हैं। एक तवील अरसे तक इस चट्टान के बारे में ज़बान ज़द आम अफसाने भी बने, जिनमें यह दावा किया गया कि यह चट्टान हवा में लटकी हुई है। हालांकि इस चट्टान के नीचे खाली जगह मौजूद है जिसे बर अल अरवाह यानी रूहों का कुआं कहा जाता है। ये जगह सदियों से मुख्तलिफ मजहबी दास्तानों का मौजू रही है। जब फन तामीर के मरकज़ में तराशे हुए पत्थर के बजाय इतनी बड़ी और कुदरती चट्टान को रखा जाता है तो इमारत इस चट्टान को घेरने और गोया इसका तहफ़ करने लगती है। कुब्बतुस्सहरा के डिज़ाइन में भी इमारत ने इस कुदरती चट्टानी ढांचे को ख़त्म करने के बजाय इसे अपने मरकज़ में रखा है और उसी के गिर्द अपनी शक्ल इख्तियार की है। अब जब हम इस चट्टान से अपना सर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम गुंबद तक पहुंचते हैं, जहां रियाजी आसमां से जा मिलती है। बाहर से सोने की तरह चमकने वाला यह गुंबद मुकम्मल तौर पर सोने का बना हुआ नहीं है। लकड़ी के मोबिन ढांचे पर कायम इस गुंबद की तारीख में कई बार मरम्मत की गई है और मुख्तलिफ अदवार में इसकी बैरूनी सतह की तजदीद की गई है। आज हम दूर से जो सुनहरी चमक देखते हैं वो उसकी बैरूनी सतह पर की गई सोने की मलमाकारी का नतीजा है। तकरीबन 20 मीटर कुतर का यह गुंबद मरकज़ में मौजूद लकड़ी और सतूनों के निज़ाम पर ऊंचा उठता है। 4 बड़े पाए और 12 सतून इस साख्ती इंतज़ाम के बुनियादी हिस्से हैं। वज़न मरकज़ से इर्द गिर्द के सतूनों पर मुंतकिल होता है और इमारत एक जियोमेट्रिक तवाज़ुन के साथ सीधी खड़ी रहती है। एक गुंबद दरअसल आसमां को नहीं उठाता, बल्कि वो ये हिसाब लगाता है कि आसमां के बोझ को कैसे बर्दाश्त करना है। ये सोचना नामुकम्मल होगा कि इमारत सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी है। यहाँ रोशनी भी फन तामीर का एक हिस्सा है। खिड़कियों से छन कर आने वाले दिन की रोशनी जब सुनहरी शीशे के पिचकारी रंगीन शीशों और संगमरमर की सतहों से टकराती है तो इस जगह का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। यूं रोशनी सिर्फ अंदरूनी हिस्से को रोशन नहीं करती, बल्कि खुद फन तामीर को नुमाया करती है। मैमारों ने जिस तरह दीवारों और मेहराबों की पोजीशन का हिसाब लगाया था, उसी तरह उन्होंने रोशनी का इन सतहों से टकराने का भी बखूबी हिसाब रखा था।

और आवाज़ के बारे में क्या ख्याल है? संगमरमर पत्थर की वसी सतहें, महराबें और मरकजी गुंबद इस जगह आवाज़ की गूंज पर असरअंदाज होते हैं। गुंबद के नीचे बोला गया एक लफ्ज़ सतहों से टकरा कर पलटता है और कुछ देर तक इस जगह अपनी मौजूदगी बरकरार रखता है। इस तरह इस फन तामीर में जिसे हम आँख से देखते हैं एक और जहत का इजाफा होता है जिसे हम कान से महसूस कर सकते हैं। एसोसिएटेड इस्लामी आर्ट और फन तामीर में जियोमेट्री का एक अहम तरीन किरदार है। कुब्बतुस साखरा महज एक इमारत नहीं बल्कि तनासुब का एक पूरा सिलसिला है। सतहों पर ख़ुद को दोहराने वाला यह जियोमेट्रिक निज़ाम अगरचे उस दौर की इलाकाई बसरी रिवायात के अनासर पर मुश्तमिल है लेकिन उसने एक नई इस्लामी जमालियाती ज़बाँ की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। चुनाचे कुब्बतुस साखरा का फ़न तामीर और उसकी सजावट बाज़ेंतीनी और सासानी आर्ट के अनासर की नई तशरीह करके एक मुनफरद बसरी इस्लूब सामने लाती है। यहाँ जियोमेट्री सिर्फ खाली जगहों को भरने वाली कोई सतही सजावट नहीं है। यह तकरार हम आहंगी और तनासुब के जरिए नज्म व ज़ब्त के एहसास को वाज़े करने वाले एक जमालियाती कायदे में बदल जाती है। इस्लामी फ़न में सदियों तक फ़रोग़ पाने वाली यह जियोमेट्रिक ज़बान न सिर्फ तामीराती सतहों को सजाएगी बल्कि उन्हें एक रिधम और यकसानियत भी फराहम करेगी। कुब्बतुस साखरा के बारे में एक और अहम तफसील जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि यह इमारत रिवायती मानों में कोई मस्जिद नहीं है। ये एक यादगार इबादतगाह है जो अपने मरकज़ में मौजूद मुकद्दस चट्टान को घेरे हुए है और उसे मरकज़ मानती है। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस इमारत पर अपने दौर के नकूश छोड़े। अब्बासी खलीफा मामून अल रशीद के दौर में कुतबों में तब्दीलियाँ की गईं। 12वीं सदी में जब सलीबियों ने यरूशलम पर कब्ज़ा किया तो मुकद्दस चट्टान को संग मरमर से ढांप दिया गया और इमारत को चर्च में तब्दील कर दिया गया। 1187 ईस्वी में यरूशलम को दोबारा फतह करने वाले सलाहुद्दीन अयूबी ने इन संग मरमर की तहों और सलीबी दौर की दीगर बहुत सी चीज़ों को हटाकर इस इमारत की इस्लामी शनाख्त को दोबारा बहाल किया। उस्मानी दौर में कानूनी सुल्तान सुलेमान ने इसकी वसी पैमाने पर मरम्मत करवाई। अमवी दौर के बैरूनी मोज़ाइक की जगह इज़्नी की खूबसूरत टाइलें लगाई गईं और खिड़कियों पर गिचकारी के शीशे बनाए गए। इस तरह कुब्बतुस साखरा अमवी विरसे के साथ साथ उस्मानी फ़न के मजबूत नकूश से आरास्ता एक इमारत में तब्दील हो गई। आज के दौर में इस बेमिसाल यादगार की देखभाल तहफ़ुज़ और इंतज़ाम एक ऐसे इदारा जाती ढांचे के ज़रिए किया जाता है जिसकी तारीखी और कानूनी बुनियादें मौजूद हैं। ये इमारत उर्दुन की वजारत औकाफ़ से वाबस्ता यरूशलम इस्लामी औकाफ इंतज़ामिया के ज़रिए चलाई जाने वाली उर्दुन की हाशमी सरपरस्ती के तहत है। यरूशलम में इस्लामी मुक़दस मकामात की देखभाल मुरम्मत और बहाली के कामों में उर्दुन के तआवुन से चलने वाले इदारे तवील अरसे से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूनेस्को की दस्तावेजात में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि मस्जिद अक्सा में तारीखी जमूद और उर्दुन के यरूशलम औकाफ के किरदार का तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर यूनेस्को ने यरूशलम के पुराने शहर और उसकी दीवारों को ख़तरे से दो चार आलमी वरसे की फहरिस्त में शामिल रखा हुआ है और वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इस सकाफती वरसे के तहफ्फुज़ के लिए फैसले और हिफाजती तरीक़ाकार नाफिज करता है। साल 2026 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने फैसला किया है कि यरूशलम के पुराने शहर और उसकी दीवारों की आलमी वरसे की फहरिस्त में हैसियत बगैर किसी तब्दीली के बरकरार रहेगी। इस तरह ज़मीन पर इस इबादतगाह का असल तहफ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती वरसे के तहफ़ुज़ का निज़ाम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तहम इस बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत और तारीखी सरपरस्ती के बावजूद यरूशलम और मस्जिद अक्सा आज भी शदीद तनाज़ियात और मदाखलत की उभरती हुई बहसों का मरकज बने हुए हैं। यूनेस्को के फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मस्जिद अक्सा के तारीखी जमूद का एहतराम किया जाए और इस जगह की सकाफती सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके साथ ही इस कंपाउंड में इश्तियाल अंगेज़ दाखिले, मजहबी रसूमात और मुकद्दस जगह के इस्तेमाल से मुतालिक तनाज़ियात भी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे का हिस्सा हैं।
ان تنازعات کے دوران مختلف ادوار میں فلسطینی مسلمانوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندیاں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ یروشلم اور مسجد اقصی کے روحانی تانے بانے اور تاریخی شناخت کا تحفظ کرنا نہ صرف آج کا بلکہ آنے والی نسلوں کے مشترکہ ورثے کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے اس مقدس مقام کے تاریخی جمود اور ثقافتی سالمیت کا تحفظ بین الاقوامی نگراں اداروں کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ تمام تر دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود قبۃ الصخرہ 1300 سال سے زائد عرصے سے اسی مقدس صحن میں پوری شان اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ دور بدل گئے، شہروں کے حکمراں بدل گئے اور اس کی تعمیراتی بحالی کے کام بھی کیے گئے، لیکن اس کے مرکز میں موجود چٹان اور اس کا احاطہ کرنے والے اس بے مثال جیومیٹرک نظام نے صدیوں تک اس عمارت کی بنیادی پہچان کو محفوظ رکھا۔ شاید قبۃ الصخرہ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ پتھر کا نہیں بلکہ وقت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگلی قسط میں ہم کچھ شہروں کے پتھریلے راستوں کے نیچے بنی اندھیری سرنگوں میں اتریں گے۔ ہم اس دور کے دفاعی نظاموں اور اس جغرافیہ میں موجود دفاعی ورثے کا جائزہ لیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔